महापुरुषों के वचन श्रवण करके जिन्होंने उस तरफ अपना मुख कर लिया, उन्हीं के हिस्से लोक परलोक का संवरना आ गया। वरना तो जिसको सबसे अच्छा युग मानते हैं, उसी सतयुग में भक्त प्रहलाद जैसे को उसी के पिता ने होलिका का सहारा लेकर जलाने का प्रयास किया, और त्रेता जैसे युग में भी ककई का इस्तेमाल करके मंत्रा चाल चलती रही।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा करें।
1: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 14। आज का कार्यक्रम आधारित है संगीतकार रोशन पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड और एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आजय किरनी।
1: सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। आपने ट्यून इन किया है 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता। आज सुनहरे पल में हम उस महान संगीतकार की दास्तान सुनेंगे जिन्होंने खामोशी को सुरों का जामा पहनाया, रोशन लाल नागरथ। 1917 में गुजरांवाला अब पाकिस्तान में जन्मे रोशन जी के पिता चाहते थे कि वो संगीत नहीं कुछ और करे, मगर उनके दिल में एक कसक थी। वो घर से भागकर लखनऊ के मरीज कॉलेज आ गए। वहाँ उन्होंने पंडित एसएन रत्नागर से संगीत की वो बारीकियाँ सीखी जो आगे चल के उनकी पहचान बनी। उनकी जिंदगी का पहला सुनहरा पल तब आया जब केदार शर्मा ने उन्हें मुंबई बुलाया और फिल्म बावरे नैन मिली। इस फिल्म ने उन्हें एक ही रात में सितारा बना दिया।

मुंबई में रोशन साहब का संघर्ष आसान नहीं था। उन्हें एक वक्त दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करनी पड़ी। वहीं उनकी मुलाकात इरा मोइत्रा जी से हुई, जो एक बेहतरीन गायिका थी। दोनों ने शादी की और इरा जी ने अपने करियर से ज्यादा रोशन साहब के सपनों को सींदा। रोशन जी बहुत नरम दिल थे, कई बार लोग उनका फायदा उठाते थे, पर इरा जी उनकी ढाल बनकर खड़ी रही। संघर्ष के उसी दौर में फिल्म मल्हार आई, जिसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। फिल्म तो नहीं चली, पर संगीत ने धूम मचा दी। संघर्ष के उसी दौर में 1951 में फिल्म आई हम लोग। इस फिल्म ने रोशन साहब को वो पहचान दी जिसके वह हकदार थे। इसका संगीत इतना हिट हुआ कि हर गली में रोशन साहब का नाम गूंजने लगा।

रोशन साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा धमाका 1960 में हुआ। उन्हें बरसात की रात मिली। साहिर लुधियानवी की शायरी और रोशन का संगीत, ये एक ऐसा मेल था जिसने फिल्मी कवाली की परिभाषा बदल दी। रोशन साहब कहते थे कि कवाली सिर्फ शोर नहीं, इबादत होनी चाहिए। इस फिल्म की कवाली न कारवां की तलाश है को रिकॉर्ड करने में 12 से 15 घंटे लगे थे, क्योंकि वो हर ताली और हर हरकत को परफेक्ट चाहते थे।

दोस्तों, रोशन साहब इतने काबिल थे पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिलने में बहुत वक्त लगा। 1963 में आई फिल्म ताजमहल, रोशन साहब ने इस फिल्म के लिए संगीत नहीं बल्कि एक अफसाना लिखा था। साहिर साहब के साथ उनकी जोड़ी इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों बिना बोले एक दूसरे की बात समझ जाते थे। ताजमहल के संगीत ने उन्हें वो सम्मान दिलाया जिसके वो हकदार थे। इस फिल्म ने दिखाया कि रोशन जी से बेहतर रोमांटिक और शायराना दुनिया कोई नहीं बना सकता।

लोग समझते थे कि रोशन साहब सिर्फ गंभीर या कवाली वाले गाने बनाते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे चुलबुले गाने दिए जो आज भी पार्टी की शान है। रोशन साहब ने दिखाया कि वो सादगी में भी जादू फूंक सकते हैं। मुकेश जी की आवाज को उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म में इस्तेमाल किया वो उनके फन का एक नया पहलू था।

0: होगी।
1: रोशन साहब को राग यमन का बादशाह कहा जाता है। उनका मानना था कि क्लासिकल संगीत ही वो बुनियाद है जिस पर फिल्मी गाना खड़ा होता है। वो अक्सर सुबह सुबह रियाज करते थे और नए सांसों का प्रयोग करते थे। उनकी फिल्म आरती में उन्होंने सारंगी का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया कि सुनने वाले रो पड़े। उनके हर गाने में एक अजीब सी नजाकत होती थी, जैसे रेशम का कोई धागा हो।

लता मंगेशकर जी रोशन साहब को अपना भाई मानती थी। वो कहती थी कि रोशन भैया की धुन गाना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। रोशन साहब लता जी की आवाज के इतने बड़े प्रशंसक थे कि कई बार वो सिर्फ लता जी को ध्यान में रखकर ही धुन बनाते थे। उनका मानना था कि जो मिठास लता की आवाज में है वो किसी साज में नहीं।

दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे कि रोशन साहब का सबसे बड़ा काम क्या है, तो मैं कहूंगी फिल्म चित्रलेखा। इस फिल्म के लिए उन्होंने जो संगीत दिया वो किसी तपस्या से कम नहीं था। मन रे तू कहीं ना धीर धरे, इस गाने को भारत का सबसे बेहतरीन फिल्मी गानों में गिना जाता है। इस गाने में संगीत कम और सुकून ज्यादा है। रोशन जी ने इसे बनाने के लिए कई रातें जाग कर बिताई थी। रोशन साहब को दर्द भरी धुनों का माहिर माना जाता था, लेकिन उन्होंने रोमांटिक गानों में भी जो मिठास घोली उसका कोई जवाब नहीं। फिल्म भीगी रात का संगीत इसका जीता जागता सबूत है। मजरू सुल्तानपुरी के साथ उनकी ये जुगलबंदी इतनी हसीन थी कि आज भी प्रेमी जोड़े इन गानों को गुनगुनाते हैं। इस गाने की धुन इतनी फ्रेश है कि लगता ही नहीं है कि ये 60 के दशक का गाना है।

16 नवंबर 1967 वो एक काली रात थी। रोशन साहब एक पार्टी में गए थे जहां उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। सिर्फ 50 साल की उम्र में वो दुनिया से विदा हो गए। उनका जाना संगीत के एक दौर का अंत था। उनके जाने का गम पूरी इंडस्ट्री को था, मगर वो जाते जाते अपनी विरासत बेटों राकेश और राजेश रोशन के रूप में छोड़ गए, जिन्होंने उनका नाम आज भी जिंदा रखा है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 14। आज का कार्यक्रम आधारित था संगीतकार रोशन पर। कार्यक्रम को एडिट और रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन। सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: दस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।
1: आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त कृष्णा, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। धान की पनीरी पानी में ही उखाड़ें, रोपाई में लाइनों का अंतर 20 सेंटीमीटर और पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। खेत में हरे खाद वाली फसल खड़ी हो तो जुताई करके पहले इसे दबा दें। धान की रोपाई 15 जून से शुरू हो चुकी है। यदि खेत में हरी खाद वाली फसल खड़ी हो तो जुताई करके पहले इसे दबा दें व फिर रोपाई करें। पौध को पंक्तियों में रोपें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर काम्बोज ने बताया कि बौनी किस्मों की व पछेती हालत में लंबी बढ़ने वाली किस्मों की रोपाई 20 सेंटीमीटर फासले की कतारों में व पौधों में 15 सेंटीमीटर की दूरी रखकर करें। रोपाई के तुरंत बाद पानी का प्रबंधन। रोपाई के बाद शुरुआती एक हफ्ते तक खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी लगातार बना रहना चाहिए। यह पानी पौधों को सीधी धूप से बचाता है, उनकी जड़ें जमाने में मदद करता है और खरपतवार को उगने नहीं देता। पानी स्थिर होना चाहिए, लेकिन वह बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। गुच्छे में पौधे। एक जगह पर एक खेत में केवल 2 से 3 पौधे ही लगाएं। बहुत ज्यादा पौधे एक साथ लगाने से उन्हें बढ़ने के लिए पूरा पोषण नहीं मिल पाता। पत्ती के ऊपरी हिस्से को काटना। यदि पौध थोड़ी लंबी हो गई है तो रोपाई से ठीक पहले उसके ऊपरी हिस्से को थोड़ा काट दें। इससे पत्तों पर रहने वाले कीड़ों के अंडे नष्ट हो जाते हैं और पौधा सीधा खड़ा रहता है। बौनी मध्यम अवधि वाले किस्में जैसे HKR 127 एवं मध्यम कम अवधि वाली किस्मों जैसे HKR 44 में 130 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ डालें। जिंक, फास्फोरस और पोटैश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1:3 मात्रा लेव बनाते समय दें और शेष नाइट्रोजन की मात्रा 2 बार बराबर बराबर रोपाई के 3 व 6 सप्ताह बाद दें। जबकि बौनी कम अवधि वाली किस्मों जैसे HKR 39 में 105 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश व 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ प्रयोग करें। जड़ की सुंडी की रोकथाम के लिए करें उपचार। धान की पनीरी को उखाड़ने से 7 दिन पहले 1 ग्राम कार्बन डाइजिम बाविस्टीन को प्रति वर्ग मीटर की दर से रेत में मिलाकर पनीरी में एक साथ बिखेर दें। यदि धान का बीज पनीरी बोने से पहले उपचारित किया हो तो भी यह उपचार अवश्य करें। धान की पनीरी पानी में ही उखाड़ें। पौधशैया में यदि पौध पीली पड़कर सफेद हो जाए तो 0.5% हराक्सिस या फेरस सल्फेट 19% के घोल का छिड़काव करें। धान में जड़ की सुंडी की समस्या हो तो 10 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान 3 g प्रति एकड़ डालें। प्याज की नर्सरी के लिए जून जुलाई में करें बिजाई। 2 माह में ही तैयार होगी पौध। प्याज से कमाई का मौका। वैज्ञानिक तरीके से करें नर्सरी की तैयारी। प्याज की खेती अब केवल एक पारंपरिक फसल नहीं बल्कि किसानों के लिए मुनाफे का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। बाजार में इसकी लगातार बढ़ती मांग और वर्तमान में रबी प्याज के भंडारण में बेमौसम बरसात के कारण हो रहे नुकसान ने खरीफ प्याज की अहमियत और बढ़ा दी है। किसान प्याज की नर्सरी के लिए जून जुलाई में करें बिजाई। 55 दिनों में करीब 2 माह में पौध तैयार हो जाएगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सितंबर अक्टूबर तक प्याज की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है। ऐसे में खरीफ सीजन में प्याज लगाने वाले किसान भाई बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान NHRDF सलारू करनाल के केंद्र प्रमुख डॉक्टर आलोक सिंह के अनुसार फसल की सफलता की नींव नर्सरी से ही पड़ती है। अच्छी गुणवत्ता वाली फसल के लिए किसानों को वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हुए स्वस्थ नर्सरी तैयार करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगस्त में तैयार की जाएंगी गांठें। खरीफ प्याज के लिए नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय है। इसके लिए प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं: बीज की मात्रा। एक एकड़ क्षेत्र में प्याज की रोपाई के लिए लगभग 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई के बाद लगभग 50 से 55 दिनों में पौध रोपाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। जिन किसानों ने फरवरी में बीज से गंठियां तैयार की हैं, वे अगस्त में सीधे इनका उपयोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ 4 से 5 किलो बीज से उगाई गई गंठियों की आवश्यकता होती है। NHRDF से ले उन्नत बीज। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान सलारू ने खरीफ सीजन के लिए उच्च कोटि की उन्नत किस्में विकसित की हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है: एग्रीफॉन डार्क रेड ADR, NHRDF के नई किस्म ₹1,800। इच्छुक किसान सलारू स्थित केंद्र से संपर्क कर इन प्रमाणित और उन्नत किस्मों का बीज प्राप्त कर अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं। जून के आखिरी सप्ताह से शुरू कर सकते हैं मूंगफली की बिजाई। MH4 व पंजाब मूंगफली No. 1 उपयुक्त किस्म। मूंगफली की बिजाई जून के अंतिम सप्ताह से शुरू कर देनी चाहिए और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर लें। इसकी उन्नत गुच्छेदार किस्मों में MH4 व पंजाब मूंगफली No. 1 बोने की सिफारिश की जाती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. काम्बोज ने बताया कि बुवाई कतार से कतार का फासला 30 सेंटीमीटर रखकर करनी चाहिए। कतारों में बुवाई इस प्रकार करें कि बीज लगभग 15 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े, जबकि पंजाब मूंगफली No. 1 के लिए यह फासला 22.5 सेंटीमीटर रखें। मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग है लाभदायक। मूंगफली बोते समय एक एकड़ भूमि में बिजाई के समय 13 किलोग्राम यूरिया व 125 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 16 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश व 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाकर ड्रिल करें। मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग लाभदायक पाया गया है। ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर से 7056413010। मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। जय भारत।

विदस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किडनी। यह है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। लेके आई हूं किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट की नई श्रृंखला। आज का टॉपिक है, माँ की मौजूदगी ही कृपा है। बचपन में कभी कभी ऐसा होता है कि कभी मन तो कभी अवचेतन माँ को तोड़ने लगता है। कभी जाने में, कभी अनजाने में और कभी बचकाने में भी माँ को आंकने लगता है। ग्रामीण या शहरी, गृहिणी या नौकरी पेशा, देसी भाषा में डांटने वाली या फरफर अंग्रेजी में फटकारने वाली, और इस अंतर के आधार पर तय होने लगती है संतान की नजर। लेकिन माँ तो बस माँ होती है। बच्चे के प्रति उसका भाव इस बात से तय नहीं होता कि बाहर की दुनिया में वो क्या है। वो घर पर खटे या बाहर की जिम्मेदारियों में उसका जीवन बटे, या फिर घर बाहर दोनों में खपे, उसके हर पल में बच्चे ही होते हैं। माँ से रिश्ते में भौतिकता है ही नहीं, वो तो विशुद्ध भाव प्रदान है। माँ की उपस्थिति ही कृपा है, ईश्वर के, जिसके लिए हमें बार बार धन्यवाद करना चाहिए। दुनिया में हर माँ आदरणीय है, उसके किसी और माँ से तुलना हो ही नहीं सकता। उसके दिन रात 24 घंटे के कोई कैसे बोल सकता है। हमें स्कूल भेजने के लिए हमसे पहले वही उठती थी और रात सबसे आखिर में सोती थी, और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि रोजाना लगातार कई कई वर्षों तक ऐसा ही हुआ, जब तक कि हम बड़े ना हो गए। माँ बिना उबे, बिना खींचे, बस प्रेम और दुलार की विषीभूत एक ही जैसे काम रोज रोज करती गई। आज भी स्कूल के बच्चे की गणवेश में देखकर अपने बचपन से पहले मन में माँ की छवि उठती है। हर उम्र में जीवन भरती है माँ। माँ जरूरी है, कि वो है तो जीवन है, और नहीं तो उसकी याद ही काफी है जीवन को जीवित रखने के लिए। माँ की बूढ़ी देह की उपस्थिति भी हमारे जीवन को उतना ही संभल देती है जितना कि कभी बचपन में उसका फुर्तीलापन हमें निश्चिंता दिया करता था। घर से दूर रहते बेटे बेटी से रात को जब माँ पूछती है खाना खाया, तो उसका जवाब देने से पहले ही पल भर में उसके हाथ की गर्म रोटी, दाल और सब्जी, उसकी बनाई हुई स्पेशल धनिये की चटनी, सब कुछ बस एक साथ याद में उतर आता है, और वो इसी तरह जीती जागती है हमारे जीवन भर। माँ जीती है अपना जीवन मुझ में, हम सब में स्वाद बनकर, प्यार बनकर, दुलार बनकर, आंचल की छाऊं बनकर, इससे भी अधिक माँ का हिस्सा समाया रहता है हम में, हमारा रक्त बनकर, हमारे हृदय की धड़कन बनकर, हर वक्त जीवन पर्यंत। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना फीडबैक भेजिए हमारे स्टूडियो नंबर पर 7056413010, 7056413010। नमस्कार।

0: हील बन के खड़ा हो जाता है, वो हमें देखने नहीं देता, क्योंकि हमारी हमारी वो एबिलिटीज, हमारे वो स्किल सेट्स, हमारी वो कॉम्पिटेंसी डेवलप ही नहीं हुई है कि हम उसको उस दृष्टि से भी देख सकें। इसलिए ललदेत कहती है जिंद ने उछान अध कर मरियत, जिंद मतलब आपको इनर वर्ल्ड की ओर जाना है, अदरवाइज तो हम मरे ही हुए हैं। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में उसको देख रहे हैं तो हम फिर उसको रियलिटी में देख ही नहीं रहे हैं। तो ललदेत यही कहती है कि उसको आपने आपने अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करना है, परंतु हमारा लोभ, मोह, अटैचमेंट्स, हमारी पावर, हमारी पोजीशन, हमारी जो ईगो है, ये हमें प्रिवेंट करती है उसको इमीडिएटली देखने में। तो वो यही कहती है जिंदने उछान अधकर मरियत पानमज पान कड़ सैरत क्या, पानमज पान माने खुद के अंदर से उसको अनुभव करने का आप प्रयास करो, और उस ईगो को ट्रांसेंड करने का प्रयास करो, इसको पोस्टपोन मत करो, इसको इसको अभी आप अपने एक्शन प्लान में लीजिए और स्टार्ट कीजिए उस अनुभव को करना। ये एक दिन का अनुभव नहीं है, परंतु अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपका इनर फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आपको नए आयामों, नए डायमेंशंस की ओर लेके जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आप उस शिवत्व को अनुभव करने का आनंद उठाओगे और वो आपकी आपकी दृष्टि बदल देगा, वो आपका व्यवहार, आपकी पूरी परिकल्पना को एक नई दिशा देगा। नमस्कार।
1: तुझ बोजान एफ एम 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रूजिव पनिन पसंदीद बात।

फिल्मी गीतों पर आधारित प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। मैं तुझको कैसे समझाऊं, तू प्यार की बातें क्या जाने, तू झांक रही माजी में, ना देख उसे, आ तुझको सुनाऊं मैं कहानी तेरी, तू अपना फसाना क्या जाने।

अगर तुम मिल गए होते तो शायद हमारी मंजिल का बंटवारा नहीं हो पाता और ये सफर हमारी खोई हुई पहचान को जिंदा रखता, लेकिन यह ना हो सका और सिमट गई हमारी ये छोटी सी दुनिया इस अंधेरे कोने में, जहां रोशनी का कोई नामो निशान तक

ही खामोश। और आज की शब ये सितारे बिना चांद के तन्हाई महसूस कर रहे हैं। माना कि इस शब की खामोशी को चीरती हुई तुम्हारी दर्द भरी आवाज मुझे तुम्हारे पास पास होने का एहसास कराता है। पर क्या तुम हो मेरे हमनवा हमराज? शायद इस बात का अंदाजा लगाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि तुम अक्सर गुम हो जाते हो मेरी तन्हाइयों को चीर कर और इस खाली

उस ओर तक जहां तुम मुझे तन्हा छोड़ गए थे। गर्चे ये सफर आज भी मुझे मेरे हर उस बीते लम्हे को भुलाने का हौसला देता, मगर तुम्हारी मासूम बेबस अदाओं का एहसास कैसे भुला पाऊंगा, जबकि हमारे रिश्ते अब पिंजरों में कैद हैं। फिर भी उन रिश्तों की खुशबू हमारे दरमियान इन फासलों को कम करने में हमेशा मदद करते आ रहे।

चलो क्यों ना लड़खड़ाएं। इन अंधेरों में मैं तुम्हें संभाल लूं। दूर तक चले हम साथ साथ, उम्मीदों के चिराग रोशन करें, ताकि एक नई सुनहरी सुबह हमें अपनी बाहों में समेट ले। भूल जाए बीते मौसम की यादों को, जब तुम तन्हा थी और मैं भटकता मुसाफिर। क्यों ना इस मौसम में याद करें ढलती शामों को, सुरमई उजालों को, रात की नरम मिजाजी को, तुम्हारी मासूम अदाओं को। इस सफर में फिर से साथ साथ लड़खड़ाएं।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाओं में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी एक दर्पण एपिसोड 7। प्रस्तुत करेंगे आरजे सेजल।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता और शो शुरू हो चुका है नारी एक दर्पण आरजे सेजल के साथ। मैं हाजिर हूँ लेकर अनसुने किस्से। आज बात करेंगे नारी के अनदेखे स्वरूप की और उनके कारनामों की। औरत को हमेशा ना शक्की कहा जाता है कि ये शक बहुत करती हैं। लेकिन अगर इसी शक को सही जगह इस्तेमाल कर लिया जाए तो यह प्रोफेशन भी बन सकता है। जी हाँ, मेरा मतलब है इंडिया की पहली लेडी शरलॉक या कह लीजिए लेडी बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, जिन्होंने अपने शक का इस्तेमाल ठीक जगह किया और बनी इंडिया की पहली लेडी डिटेक्टिव रजनी पंडित। अपने 30 साल के करियर में अब तक 80,000 केसेस सॉल्व कर चुकी हैं और अपनी खुद की एजेंसी भी खोली और कई लोगों के छुपे हुए राज भी। अब इतना सब जानकर आपके अंदर का जासूस भी ये जानना चाह रहा होगा कि इस सफर की शुरुआत हुई कैसे और कौन से जोखिम और कैसे केसेस करती हैं वह सॉल्व। सब बताऊंगी, लेकिन उसके लिए रखना होगा थोड़ा सब्र और सुनते रहना होगा रेडियो वितस्ता।

शहनाई खुशियों की बजेगी, सुन लो उम्मीदें दुल्हन से सजेंगी, सुन लो काली सी शब के पार से, देखो चंदा की हमें झलक दिखेगी।

0: வெல்கம் பேக் டு
1: ரேடியோ 90
0: ரேடியோ வித் அஸ்தா. तो जासूसी पर वापस चलते हैं, बात करते हैं रजनी पंडित की, इंडिया की पहली लेडी डिटेक्टिव. वह एक सामान्य परिवार में पली बड़ी थी. वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसीलिए ग्रेजुएशन के पहले साल ही उन्होंने क्लर्क की नौकरी शुरू कर दी थी. और एक दिन उसी नौकरी के दौरान उनके साथ काम करती एक महिला के घर पर चोरी हो गई और शक उन्हें अपनी बहू पर था. और उन्होंने रजनी से छानबीन करने के लिए कहा. लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब पूछताछ के दौरान पता चला कि चोरी बहू ने नहीं बल्कि बेटे ने की थी. इसके बाद उन्होंने छोटे छोटे और केसेस लेना शुरू किए और लोग उन्हें लेडी बॉन्ड के नाम से बुलाने लगे. और जब इस बात का घर पर पता चला तो उनके पिताजी ने उन्हें कुछ कहा नहीं बल्कि उनका साथ दिया, क्योंकि वह खुद सीआईडी ऑफिसर थे. उन्होंने उन्हें बचने के पैंतरे भी बताए. वह कभी कामवाली बनकर तो कभी गर्भवती महिला बनकर काफी केसेस सुलझाती रही. गुमशुदा की तलाश से लेकर फाइनेंशियल फ्रॉड, बैकग्राउंड चेक से लेकर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तक सब तरह के केसेस वह हैंडल कर चुकी हैं. तो ये है इंडिया की पहली फीमेल डिटेक्टिव. और शायद आपका अगर कोई अनसुलझा केस है, हो सकता है वो सॉल्व कर दे. तो अब वक्त है एक गीत का और साथ ही आकर सुनाऊंगी एक माँ अन्नपूर्णा जैसी माँ की कहानी, जिन्होंने लॉकडाउन में भी किसी को भूखा नहीं सोने दिया और अन्न की कभी कमी नहीं होने दी. कौन है वो, कहाँ की रहने वाली, सब बताऊंगी. लेकिन उसके लिए सुनते रहे नारी एक दर्पण, सिर्फ
1: रेडियो 90
0: रेडियो वितस्ता पर.

अगर आपको 1 रुपए देकर बाजार में भेज दिया जाए और कहा जाए कि इसी में पेट भरकर खाना खा लीजिए, तो आपको भी सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि जहां आज के समय में 1 रुपए में टॉफी का मिलना इतना मुश्किल है, वहां खाना कैसे मिलेगा। वही कोयम्बटूर में एक बूढ़ी अम्मा है जो उन प्रवासी मजदूरों को 1 रुपए में इडली खिला रही है जो खाने पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च सकते, और ये काम वो पिछले 30 सालों से कर रही हैं। इन बीते सालों में महंगाई कितनी बड़ी घटी ये हम सबको पता है, लेकिन इडली अम्मा की मजदूरों का पेट भरने की भावना कभी नहीं बदली, ना ही उनके मन में कभी इस बिजनेस से प्रॉफिट कमाने का मन हुआ। और रेट आज तक सिर्फ 50 पैसे से 1 रुपए ही बदला है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि कोविड के टाइम में जब सब कुछ बंद था, ना कोई सब्जी का ठेला, ना ही कोई राशन की दुकान, तब अम्मा ने कैसे इडली बनाई और कैसे मजदूरों तक पहुंचाई। कोई बात नहीं, ये बातें भी आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको सुनते रहना होगा नारी एक दर्पण, और फिलहाल के लिए एक म्यूजिकल ब्रेक।

कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। ऐसे ही तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रहने वाली के कमलाथल ने गरीब मजदूरों की मदद करनी चाही और राह अपने आप बन गई। और इस राह पर चलते एक समय ऐसा भी आया जब पूरा देश बंद था और बाजार जाकर इडली के लिए सामान लाना नामुमकिन था। और जहाँ हर चीज के दाम उस समय बढ़ गए थे, इडली अम्मा ने 1 रुपए ही दाम रखा। और जब खबरों में ये बात आने लगी तो मदद के लिए काफी लोग आगे बढ़े और उन तक राशन पहुंचाया ताकि ये काम रुक ना सके। उनका कहना है कि दिन में वह 400 से 500 इडली बेचती हैं, जिसमें से 100 रुपए की उन्हें बचत होती है और अगले दिन का इडली का सामान आता है। उनसे जब पूछा गया कि वह ये काम क्यों करती हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये काम करकर खुशी मिलती है और रात को सुकून से सो पाती हैं। भारत अलग अलग रंगों से भरा देश है। इस देश के हर कोने में कोई अलग रंग दिख ही जाता है जो इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और इस खूबसूरती के और भी कई रंग है जो आपको बताती रहूंगी, लेकिन उससे पहले एक गीत सुन लेते हैं।

0: सुनते रहे
1: रेडियो
0: रेडियो और प्रोग्राम सुन रहे हैं नारी एक दर्पण आरजे सेजल के साथ। आज हमने जानी कुछ अद्भुत नारी की कहानी और अब वक्त है इजाजत लेने का। लेकिन जाने से पहले एक और छोटी सी कहानी आज की नारी की, जो बनी सेल्फ टॉट फैशन डिजाइनर, ना कोई कोर्स ना कोई डिग्री, लेकिन लिबास इतने सुंदर सिले कि इंटरनेट ने उनके टैलेंट को सर आंखों पर तो बिठाया ही, बल्कि हाल ही में उन्होंने 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी ड्रेसेस से देश का नाम ऊंचा किया और एक्ट्रेस सोनम कपूर ने उनसे अपनी ड्रेस बनाने की रिक्वेस्ट भी की। उनका नाम है नैन्सी त्यागी, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले से बिलोंग करती हैं। और इस काम को करने की प्रेरणा जब उनसे पूछी गई तो उनका बस इतना ही कहना था कि वह अपनी माँ को काम से हटाना चाहती थी और उन्हें आराम देना चाहती थी। तो ये थी एक और जज्बे से भरी कहानी। कुछ कहानी ऐसी होती हैं जो सिखा जाती हैं कि टैलेंट सब में है, लेकिन उस पर भरोसा करना और उस पर काम करना हम पर निर्भर करता है। सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, बल्कि उठकर पूरे भी किए जाते हैं। तो आज की ये बात यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करती हूँ इस नारी एक दर्पण के एपिसोड से भी आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। मिलती हूँ आपसे फिर नारी एक दर्पण के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहे
1: रेडियो
0: रेडियो वितस्ता।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी एक दर्पण एपिसोड 7। लिखा, रिकॉर्ड, एडिट व प्रस्तुत किया आरजे सेजल ने। निर्देशन भारत सोपोई। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का।

बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहां पना, जिसे न आप बदल सकते हैं न मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ बंधी है। कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। राजेश खन्ना नहीं रहे। 18 जुलाई 2012 राजेश खन्ना इस दुनिया फानी से कूच कर गए और कह गए, क्या फर्क है 70 साल और 6 मिनट में, मौत तो एक पल है। समान 100 बरस का और पल भर की खबर नहीं। उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरे देश में मातम की लहर दौड़ गई। राजेश खन्ना ने आशीर्वाद में

अदा का जन्म 29 दिसंबर सन 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। राजेश का असली नाम जतिन खन्ना था और अपने अंकल के कहने पे जतिन राजेश खन्ना बन गए। एक टैलेंट हॉन्ट के दौरान राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। 10,000 में से सिर्फ 8 लड़के ही चुने गए, उनमें से एक नाम था राजेश खन्ना।

राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत सन 1966 में रिलीज के लिए तैयार हुई, लेकिन उनको जीपी सिप्पी ने राज फिल्म में ब्रेक दिया। इस अदाकार ने सन 1969 से 1975 तक फिल्म आराधना और फिल्म दो रास्ते से अपनी कामयाबी की शुरुआत की। इस दौरान 15 सुपरहिट फिल्में दी और उन्हें सुपरस्टार का खिताब मिला। फिल्म आराधना के अलावा सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद रोटी, खामोशी और आपकी कसम जैसी फिल्मों ने कमाई के नए रिकॉर्ड

राजेश खन्ना को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 14 बार नामांकन हुआ था और 3 बार ऐसे बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। राजेश खन्ना ने उस जमाने की लगभग हर हीरोइन के साथ काम किया, हेमा मालिनी, मुमताज, तनुजा, आशा पारेख, वहीद रहमान, लीना चंद्रावरकर और शर्मिला टैगोर। हेमा मालिनी के साथ राजेश खन्ना ने 15 फिल्मों में काम किया, जबकि एक्ट्रेस मुमताज के साथ 8 सुपरहिट फिल्मों में काम किया।

लड़कियों के बीच राजेश खन्ना की मकबूलियत इस कदर थी कि लड़कियां राजेश खन्ना के फोटो के साथ शादी करती थी और खून से उन्हें खत लिखा करती थी। राजेश खन्ना की कामयाबी में संगीतकार आर डी बर्मन और गुलकार किशोर कुमार का अहम योगदान रहा। किशोर ने 91 फिल्मों में राजेश को आवाज दी तो आर डी बर्मन ने 40 फिल्मों में संगीत दिया।

एक्ट्रेस मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ सुपरहिट जोड़ी के अलावा राजेश खन्ना का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। टीना मुनीम से प्यार की खबर के अलावा अंजू महेंद्र से उनके अफेयर की भी काफी चर्चा हुई। इन चर्चाओं पर खुद ही रोक लग गई जब अचानक सन 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली और ट्विंकल और रिंकी खन्ना की

गांधी के कहने पर राजेश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने कुछ चुनाव भी लड़े। लाल कृष्ण अडवाणी को चुनाव में उन्होंने कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को हराया भी।

दोस्तों आपको याद होगा, राजेश खन्ना ने छोटे पर्दे पर भी 2001 में अपने पराये और इत्तेफाक जैसे सीरियल में नजर आए और यह सिलसिला 2008 में सीरियल भाभी मां तक

राजेश खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री में काका के नाम से भी जाना जाता रहा। सुपरस्टार के दौरान राजेश खन्ना के लिए एक खास कहावत का इस्तेमाल हुआ करता था, ऊपर आकर

80 के दशक के अंत में राजेश की पहली पारी का अंत हुआ। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश की कई रोमांटिक फिल्में असफल रहीं।

सन 1994 में राजेश खन्ना ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। 1994 में खुदाई, 1999 में आ अब लौट चले। 2002 में क्या दिल ने कहा और सबसे अंत में वफा सिनेमा घरों में आई।

दोस्तों, राजेश खन्ना के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट और मासूमियत झलकती थी। राजेश आखिरी सांस तक खूब जिया और जी भर के जिया। उन्हें बेहतरीन और लजीज खाना पसंद था और कभी कभी किचन में जाके खुद खाना बनाते थे। मेहमान नवाजी सीखे तो राजेश खन्ना से। जज्बाती थे, छोटी छोटी बातों को दिल से लेते थे, किसी के दुख को देख नहीं सकते थे, इसलिए तो कहते थे I hate tears।

सन 1991 में 25 साल इंडस्ट्री में पूरा करने पर उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। इन 25 सालों में राजेश खन्ना इंडस्ट्री में वाहिद एक हीरो बने रहे, जिन्हें बतौर लीड रोल 106 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। सन 1966 और 1975 के दौरान राजेश खन्ना की 35 फिल्मों ने गोल्डन जुबली का खिताब हासिल किया और सन 1966-91 के दौरान 22 फिल्मों ने सिल्वर जुबली खिताब

फिल्म गीत गाया पत्थरों के ऑडिशन के दौरान जितेंद्र को राजेश खन्ना ने ही कुछ फिल्मी टिप्स दिए थे। इस तरह वी शांताराम ने जितेंद्र को पहली फिल्म गीत गाया पत्थरों के लिए साइन किया। राजेश खन्ना ने एक ही फिल्म में डिंपल कपाड़िया के साथ काम किया। फिल्म थी जय शिव

फिल्म आपकी कसम के दौरान सन 1974 में बीबीसी ने राजेश खन्ना पे एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी जिसका टाइटल था बॉम्बे सुपरस्टार। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने कहा था कि महिलाएं राजेश खन्ना की दीवानी थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लंबी कतारों में घंटों तक खड़ी रहती थी।

संगीतकार प्यारेलाल राजेश खन्ना के साथ काम करने को लकी मानते थे। सन 1969 में फिल्म दो रास्ते और सन 1986 में फिल्म अमृत के लिए संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आम तौर पे राजेश खन्ना की फिल्मों में अशोक कुमार, सुजीत कुमार, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, असरानी बिंदु, विजय अरोड़ा, रुपेश कुमार, दीना पाठक और एके हंगल जैसे मंच कलाकार नजर आते थे। दोस्तों में शामिल रहे हैं राज बब्बर, जे ओम प्रकाश, प्रेम चोपड़ा, डी रामा नायडू और जितेंद्र। दोस्तों, हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं।
1: अमीन साहब, आदाब।
2: आदाब भैया।

0: के दिल में बसा हुआ है। मैं उसके बाद उनके चौथे पर गया था, कंडोलेंस मीटिंग थी और वहाँ कई लोगों से मुलाकात की, सबके चेहरे उदास थे। और एक गजब की चीज भी मैंने सुनी वहाँ, राजेश खन्ना की अपनी आवाज में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया कि किस तरह वो, ये पता नहीं किसका इंटरव्यू था, उसमें सिर्फ राजेश बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह वो स्टेज की दुनिया से आए और कैसे धीरे धीरे उन्होंने तरक्की की।
1: जी
0: ये स्टेज पर काम करने वाली बात जो राजेश की थी, मेरा ख्याल है वो उनकी अदाकारी को संवारने निखारने में सबसे बड़ी बात थी। वो जब आए तो एक तैयार एक्टर थे, उनको एक्टिंग सीखनी नहीं पड़ी। हाँ, फिल्मों के लिए स्टेज और फिल्म में जो थोड़ा सा फर्क होता है
1: जी,
0: वो एडजस्टमेंट उन्होंने पूरी तरह कर लिया और उसके बाद तो वो अपनी अदाओं से, अपनी खास हरकतों से, अपने खूबसूरत चेहरे से, अपनी मधुर आवाज से वो बस बढ़ते ही बढ़ते चले गए। मैंने उनकी कई फिल्मों में काम इसलिए किया ताकि मतलब इस तरह से कि मैं पब्लिसिस्ट उसका था रेडियो पर,
1: जी,
0: और इस लिहाज से मेरी मुलाकात कई बार उनसे होती रही। एक इंटरव्यू सिर्फ मैंने उनका किया और वो कब, जब उनकी शादी होने वाली थी डिम्पल कपाड़िया से,
1: 1973 में।
0: 1900, खैर साल तो मैं भूल गया
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: और शादी से करीब 4 रोज पहले मैं अपना टेप रिकॉर्डर लेकर उनके घर पहुंच गया और उनसे खूब बातें हुई। और उन्होंने कहा मुझे कि जब मैंने पूछा कि शादी के बाद क्या डिम्पल काम करेंगी फिल्मों में, तो कहने लगे नहीं, वो तो बस ये बॉबी आखिरी फिल्म है उनकी और उसके बाद वो कोई काम नहीं करेंगी, क्योंकि पत्नी को घर में रहना और पति के साथ रहना ज्यादा अच्छा रहता है। मगर और उसके बाद वो रहने भी लगी उनके साथ, 2 बेटियां भी पैदा हुई, मगर न जाने क्यों उसके बाद क्या हुआ कि बात थोड़ी बिगड़ी
1: जी,
0: और वही बात हुई जो कि बॉबी के गीत में बॉबी की हीरोइन डिम्पल ने कहा था अपने हीरो ऋषि कपूर से कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं महके चले चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो।
1: जी
0: और वो चली गई महके, और दोनों अच्छे कलाकार अच्छे लोगों के बीच एक दीवार सी बन गई। इस दीवार की वजह से आखिर तक, यानी राजेश खन्ना के आखिरी दिनों तक ये दोनों अलग रहे। और जब वो बहुत बीमार हुए, हॉस्पिटल में आना जाना शुरू हो गया, तो एक अच्छी पत्नी की तरह डिम्पल फिर उनके पास चली गई और उनकी देखभाल भी की, उनके हॉस्पिटल ले जाने लाने में, वहां से लाने में उनका और उनके दामाद अक्षय का बहुत बड़ा हाथ था।
1: जी जी
0: और इस तरह से मामला चलता रहा कि आखिर सांस रुक गई और एक बहुत बड़ा कलाकार जो था वो खत्म हो गया।
1: अमीन साहब, जिन दिनों आप सिलोन में थे उस वक्त कोई ऐसी कोई याद उनके साथ जुड़ी हुई है?
0: या तो फिल्मी फिल्म पब्लिसिटी के थ्रू रहा, या फिर वैसे दोस्ती के जरिए और उनके दोस्तों से दोस्ती के जरिए, मसलन आरडी बर्मन बड़े दोस्त थे उनके, और
1: किशोर
0: आर
1: कुमार,
0: मेरे भी दोस्त थे भाई की तरह,
1: किशोर कुमार,
0: किशोर कुमार भी
1: जी, जी, जी।
0: तो इन सब से मिलना और उनके उनसे बात करना, राजेश की, ये होता होता रहता था। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा जो कि मेरे प्रोग्राम गीतमाला से ताल्लुक रखती है, और वो ये कि राजेश वैसे तो आते ही छाने लग गए थे और उनके गीतों ने भी धीरे धीरे काफी धूम मचानी शुरू कर दी थी, लेकिन आगे चलकर जब आराधना में उन्हें किशोर कुमार की आवाज मिली पहली बार, तब तक तो किशोर गाया करते थे सिर्फ अपने लिए या देवानंद के लिए, लेकिन आराधना में राजेश खन्ना के चेहरे पर जब किशोर कुमार की आवाज गूंजने लगी, उनके लब हिलने लगे किशोर की आवाज पर, तो ऐसा तहलका मचा कि बस करीब करीब सभी गीत टॉप हिट हो गए। और राजेश खन्ना न सिर्फ अपनी अदाकारी के जरिए बल्कि अपने खूबसूरत गीतों के जरिए भी लोगों के दिल में और गहरे उतरते चले गए।
1: कहा जाता है कि लड़कियां उनके फोटो से शादी करती थी, ऐसा?
0: बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात जो मुझे बहुत अजीब

0: कि कुंवारी लड़कियों की के तो वो फेवरेट थे ही, लेकिन बूढ़ी औरतों के यानी अम्मा नानियों का भी ये हाल था कि वो बड़ा प्यार करती थी, जैसा उनको अपना बेटा कहती थी, समझती थी और दुआएं करती थी उनके लिए, और छोटे बच्चे भी खूब मजा लेते थे उनकी अदाकारी का। तो वाकई वो पहले सुपरस्टार बने फिल्मी दुनिया के, यानी उनसे पहले तीन तो थे ही जो धूम मचा रहे थे,
1: जी
0: दिलीप और राज और देव, लेकिन उनके बाद जो सुपरस्टार कहलाए गए वो यही थे।
1: अमीन साहब, आखिरी दिनों में कभी आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला?
0: नहीं, मेरा तो ताल्लुक काफी वर्षों से बिल्कुल ही नहीं रहा था, बल्कि मेरा ही क्यों, किसी का भी ताल्लुक नहीं रहा था उनसे। मैंने देखा टीवी पर देखा कि एक बार वो किसी फंक्शन में आए थे और कुछ बोला था उन्होंने, और वो कविता जो उन्होंने दाग में बोली थी ना,
1: जी,
0: उसको एक नए अंदाज में जरा जोश के साथ पेश किया था। अमिताभ बच्चन कंपेयर कर रहे थे उस शो को,
1: जी
0: लेकिन मैं कभी मिल नहीं पाया उनसे, बल्कि वो खुद अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान के लोगों से जरा दूर ही चले गए थे, एक हर्मिट से बन गए थे वो, और मुलाकातें लोगों की जरा कम ही होती थी, बीमार भी रहते थे। उनका उनका चेहरा आपने देखा ही होगा, दाढ़ी
1: जी
0: तो
1: जी
0: थी और गोया दाढ़ी छुपा रही थी उनके चेहरे का मुरझाना, तो बहुत बहुत बीमार, बहुत बूढ़े से लगने लगे थे वो।
1: ये भी उन दिनों कहावत थी कि ऊपर आका और नीचे काका।
0: ये मैंने नहीं सुना, ये मैंने नहीं सुना,
1: जी
0: लेकिन ये सही सही है कि सब उन्हें काका कहते थे। मैंने उन्हें काका नहीं कहा कभी, क्योंकि वो थे मुझसे जरा छोटे
1: जी
0: तो मैं राजेश जी का कहा करता था उनको।
1: अमीन साहब, किसी गाने के जरिए आप उनको याद करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के लिए?
0: जिंदगी का सफर है ये ऐसा सफर, कोई जाना नहीं कोई समझा नहीं, बहुत दिल को छू लेने वाला गाना था ये, और मेरा ख्याल है उन्हें उनकी याद में ये गाना जरूर बजाना चाहिए।
1: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: क्या आपको मालूम है राजेश खन्ना के आखिरी अल्फाज क्या थे?
1: किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। प्यार आप मुझे भेजते रहे, प्यार मुझे मिलता रहा, लेकिन उस प्यार को मैं कभी वापस लौटा नहीं पाया। लेकिन जो भी कहना चाहूंगा, जिन अल्फाजों में भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्हें दिल की सच्चाई होगी, मेरी ईमानदारी होगी, मेरा जमीर होगा। आज मेरा दिल हल्का हुआ आपसे गुफ्तगू करके, बात करके, और आपका मैंने शुक्रिया अदा किया। मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि चलिए इस बारे में आपसे मुलाकात हुई। किसे है अपना कहे कोई इस काबिल नहीं मिलता, या पत्थर तो बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपका एक हिस्सेदार मैं भी हूं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आपका प्यार था, आप वहां प्यार मौजूद हुए उतनी भारी संख्या में, तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और मेरा बहुत बहुत सलाम।
0: ज़ाती तौर पे राजेश खन्ना से मेरी मुलाकात पहलगाम कश्मीर में हुई थी फिल्म रोटी की शूटिंग के दौरान, और मुझे आज भी याद है। कश्मीर के दिल फरीब और हसी मनाजिर, खूबसूरती से वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। मेरी और उनकी बातचीत के दौरान वो अपने सिर को अपने ही अनोखे अंदाज में हिलाते रहे।
2: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन।
0: और वही उनका अंदाज हमें उनकी फिल्मों में देखने को मिलता रहा।
2: गर्मियों के निहार है तो तुमको मुझसे प्यार है।

2012 दिन के 1:40 पे मौत ने दस्तक दी।

भाई राजेश को अपने साथ ले गई। कौन कब कैसे उठेगा यह कोई नहीं जानता, पर यह भी अपनी जगह सही है, आनंद मरते नहीं। पसीना मौत का माथे पे उतरा है, आई न लाओ, हम अपनी आखिरी तस्वीर उतारेंगे।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: टाइम है, फुकड़ दिन तो तू।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत। हम सुन रहे हैं 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

मैं चाहुंदा हां इदां ही तू हसदी रह, दूरों दूरों दिल मेरे विच वसदी रह, मिलके मैनू मुख तो तेरे हासा ना उड़जे, बिन देखे ही मेरियां गल्लां दसदी रह, बिन देखे ही मेरियां गल्लां दसदी रह।

0: सच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

है अपना देश, है अपना देश, अपना देश है आज से दब रहे थे लाज से, अपना देश है आज से दब रहे थे लाज से, दूसरों के राज से उनके तख्त ताज से, उनके तख्त ताज से कट

सुनन खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी और लेके आए हम आपके लिए आज के कृषि समाचार। इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगे,
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नैना।
0: मक्का की 15 जुलाई तक बिजाई करें, संकर व बायो फोर्टिफाइड किस्में अपनाएं, 4 से 5 बार करें मिट्टी की जुताई, 1 एकड़ में 8 किलोग्राम बीज डालें। मक्का की खेती के लिए रेतीली दोमट व दोमट मिट्टी और अच्छे जल निकासी वाले खेतों का चयन करें, 4 से 5 जुताई कर 2 बार सुहागा लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और खेत में ढेले ना रहे। मक्का की बिजाई केवल ऊंचे इलाकों में ही करें जहां पानी की निकासी हो सके। मक्का फसल की बिजाई मध्य जुलाई तक पूरी कर लें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि सामान्य मक्का की लंबी व मध्यम अवधि के सिफारिश शुदा एकल संकर किस्में और बायो फोर्टिफाइड मक्का की पूसा MH4, पूसा HQPS1 इम्प्रूव्ड, पूसा HQPS5 इम्प्रूव्ड, HQPS1, HQPS4 और HQPS5 संकर किस्मों का ही प्रयोग करना चाहिए। टेम्पोट्रियम लेडियम 42 SC 115 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से बिजाई के 20 से 25 दिन बाद 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बिजाई से पहले कर ले बीज उपचार। 1 एकड़ खेत के लिए 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। मक्का में फॉल आर्मीवर्म फ्रा सर्वाधिक हानिकारक कीट है। फ्रा की रोकथाम के लिए क्लोरोट्रोनरी पोल 19.8, थाइमेथो किस्म 19.8 अनुपात कीटनाशी द्वारा 6 मिलीमीटर प्रति किलोग्राम बीज के दर से शाम को बीज उपचार करें व सुबह बिजाई करें। इससे दीमक व तना छेदक की रोकथाम भी हो जाएगी। फसल की बीमारियों से बचाने के लिए थेरम 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज को बिजाई से 4 से 5 घंटे पहले उपचारित करें। बिजाई का तरीका, पूर्व पश्चिम दिशा में मेड बनाकर मेड के दक्षिण दिशा में उपचारित बीज से 4 से 6 सेंटीमीटर गहरी बिजाई करें। बाद में आधा खुड की ऊंचाई तक पानी लगाने से जमाव ज्यादा व जल्दी होता है। बिजाई यदि न्यूमेटिक प्लांटर द्वारा चौड़ा खुड विधि का उपयोग करके की जाए तो जमाव अधिक होता है व पानी को भी 30 से 35 अनुपात की बचत रहती है। खाद व उर्वरक। ज्यादा पैदावार लेने के लिए गोबर की खाद 60 क्विंटल प्रति एकड़ खेत की तैयारी से पहले डालें। सामान्य दिशाओं में 50 किलोग्राम DAP, 40 किलोग्राम MOP व 37 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग बिजाई के समय करें। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए 600 ग्राम एस्ट्रोजन 50 WP के 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के 1-2 दिन बाद या खरपतवार अंकुरण से पहले छिड़काव करें। कीट नियंत्रण। फसल में फॉल आर्मी वर्म सबसे खतरनाक कीट होता है। इसका पता लगाने के लिए खेत में 5 फेरोमोन पिंजरा प्रति एकड़ के दर से बिजाई के बाद लगाएं। क्लोरोनेट्री प्रोनोल 18.5 SC 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ या सैन्योटोराम SC 100 मिलीलीटर का 200 लीटर पानी में गोल बनाकर छिड़काव करें।
1: घर पर पशुओं के लिए संतुलित दाना मिश्रण तैयार करें, बढ़ेगा दूध उत्पाद। मौसम के अनुसार आहार देने से स्वस्थ रहेंगे पशु। दुधारू पशुओं से अच्छा दूध और मुनाफा लेने के लिए उन्हें पौष्टिक और संतुलित आहार देना बेहद जरूरी है। आज उपलब्ध विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक संतुलित पशु आहार कंपाउंड फीड किसानों के लिए एक सुविधाजनक किंतु अपेक्षाकृत महंगा विकल्प है। डॉक्टर सुजॉय खन्ना लुवास ने बताया कि पशुपालक आसानी से सस्ता और 100% शुद्ध संतुलित दाना मिश्रण तैयार कर सकते हैं। इससे न केवल खर्च में भारी कमी आएगी बल्कि पशुओं की सेहत सुधरेगी और दूध में फैट और SNF की मात्रा भी शानदार तरीके से बढ़ेगी। सामग्री और सही अनुपात। अनाज 35 से 40 किलो, मक्का, जो गेहूं या बाजरा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसम के अनुसार अनाज बदल सकते हैं, जैसे गर्मियों में जौ की तासीर ठंडी होती है और सर्दियों में बाजरा गर्माहट देता है। खल 25 से 30 किलो, प्रोटीन की पूर्ति के लिए सरसों की खल, बिनौला, कपास या मूंगफली की खल लें। चोकर और चूनी 20 से 25 किलो, गेहूं का चोकर और चना, उड़द या मूंग की दाल की चूनी छिलका पाचन तंत्र के लिए बेहतरीन होते हैं और फाइबर की कमी पूरी करते हैं। साधारण नमक 1 किलो, यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और पशु की भूख बढ़ाता है। तैयार करने की सही विधि। अनाज को बिल्कुल बारीक आटे की तरह पीसने के बजाय दलिया पिसवाएं। खिलाने की मात्रा और सावधानियां। एक स्वस्थ पशु को उसके शरीर के रखरखाव के लिए रोजाना 1.5 से 2 किलो दाना चाहिए। अमरूद का साइलेंट किलर है फल मक्खी, बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप है फायदेमंद। बारिश सीजन में फल के छिलके में अंडे देकर फसल खराब करती है मक्खी। अमरूद के बरसाती फल को फल मक्खी प्रभावित कर सकती है। कीटनाशक मुक्त उत्पादन के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग फायदेमंद हो सकता है। हाल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्वावा अमरूद भूना में किसानों को जागरूक करने के लिए फल मक्खी ट्रैपों में नए लीवर लगाए गए। प्रदेश में 17,448 हेक्टेयर में अमरूद की फसल है। पिछले साल 21,228 मेट्रिक टन उत्पाद हुआ था। प्रदेश में अमरूद की खेती हिसार, फतेहबाद, सिरसा, भिवानी, जींद, करनाल, सोनीपत, पानीपत व यमुनानगर में की जाती है। जुलाई से अक्टूबर तक फल मक्खी का प्रभाव रहता है। कृषि विज्ञान केंद्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि फल मक्खी अमरूद, आम, पपीता, नींबू की फसलों का प्रमुख कीट है। मादा मक्खी फल के छिलके में अंडे देती है। अंडों से निकले कीड़े फल के अंदर गूदा खा जाते हैं। इससे फल सड़ने लगते हैं, गिर जाते हैं व बाजार में गुणवत्ता घट जाती है। इससे 30 से 80% तक उत्पादन प्रभावित हो सकता है। सामान्य प्लास्टिक ट्रैप 80 से 200 रुपए तक उपलब्ध। सामान्य प्लास्टिक ट्रैप 80 से 200 रुपए तक उपलब्ध है। लूअर की कीमत 35 से 100 रुपए प्रति पीस या ब्रांड के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कृषि विश्वविद्यालय हिसार से भी यह किफायती दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं। 1 एकड़ में नियंत्रण के लिए 8 से 10 ट्रैप लगाने की सलाह दी जाती है। व्यवसायिक ट्रैप लूअर किट की कीमत इससे अधिक भी हो सकती है। किसानों को उत्पादन में मिलेगा बढ़ावा। फल मक्खी की समय रखते पहचान हो जाती है। कीट की संख्या बढ़ने से पहले नियंत्रण संभव होता है। फलों का नुकसान और गिरावट कम होती है। कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत घटती है। उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। बेहतर गुणवत्ता वाले फल तैयार करने में मदद मिलती है।
0: ये थे आज के कृषि समाचार और उम्मीद करते हैं कि इन कृषि समाचारों से आपका लाभ होता होगा। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप कृपया हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। हम उस जानकारी को सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले कृषि समाचार में।
1: मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।
0: नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रूपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रूपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रूपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC/ST, आधार कार्ड, जमीन की फरद, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर। ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रूपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब मुझे दीजिए इजाजत, कोई और जानकारी लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज से रेडियो वितस्ता पर उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजन रोजियो पनिन पसंदीदा बात

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: छोर मत छोड़ो, हर घर तक हर गांव तक आए।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
2: रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी, किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: लड़की? अरे कौन थी वो लड़की?
1: मैंने जब पूछा
2: ला ला ला ला,
1: बोल तेरा नाम क्या,
2: ला ला ला ला,
1: तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई थी वो धम से, आई थी वो धम से, गई छम छम छम, मन्नू।

0: सामने वो देख रहे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बाद बड़ी सिंबल।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

धक धक धक धड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: ही दलज में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी सुनने वालों को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। पेश है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स, जहां हम लेकर आते हैं उन गीतों के महफिल जो दिल के काफी करीब है। आज के इस कार्यक्रम में पेश है कुछ रोमांटिक ड्यूट्स, वो गीत जो दो आवाजों में पिरोए गए और हर लफ्ज हर सुर में मोहब्बत की खुशबू है। तो चलिए आइए एक बार फिर चलते हैं उस जमाने में जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस भी किए जाते थे।

0: किसी का आंचल, आंचल में क्या जी
1: अजब सी हलचल।
2: शुक्रिया कहना भी एक तरीका होता है, प्यार इजहार नहीं एहसास बन जाए तो।

कहानी घड़ी फिर खुदा जाने सी सुहानी घड़ी फिर मेरे

90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मखमली आवाज के मालिक जगजीत सिंह नहीं रहे।
1: चिट्ठी न कोई संदेश,
0: ऐसे हिजर के मौसम कब कब आते हैं, तेरे अलावा याद हमें सब आते हैं। जगजीत का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। उनकी वालिद मोहतरम सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के एक विभाग पीडब्ल्यूडी में सरकारी कर्मचारी थे। जगजीत का परिवार पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। मां थी बचन कौर। जगजीत के बचपन का नाम जीत था। बाद में ज्योतिषों के कहने पर उनका नाम जगजीत पड़ गया। शुरुआती तालीम गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई और बाद में पढ़ने के लिए आप जालंधर आ गए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। सन 1965 में आप मुंबई आ गए और पेइंग गेस्ट के तौर पर मुंबई शहर में ही रहने लगे और यहाँ विविध भारती में जिंगल और विज्ञापन गाकर रोजी रोटी कमाने का जरिया पैदा किया। सन 1976 में पहला हिट एल्बम पेश किया और इन 1967 में एक रिहर्सल के दौरान आपकी मुलाकात चित्रा से हुई और 2 साल के बाद यानी 1969 में आप दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों साथ मिले।

0: वो छोटी सी रात वो लंबी कहानी।
1: उनकी गजल गायकी चिनाब के पानी से उठती हवा की हल्की महक का एहसास कराती है। बेशक जहलम के उस पर गजल गायकी की एक बेशकीमती दुनिया बसती रही है, पर वहां भी इस बात का इल्म रहा है कि दूसरी छोर पर गजल को बहुत करीने से, संजीदा जज्बात से सजाया

गजल ही नहीं, दोहे, कुछ लोकगीत और भजनों में भी जगजीत ने अनोखा समर्पण दिखाया। बेगम अख्तर ने गाया और बखूबी गाया। मेहदी हसन को तो लोगों ने ऊंचे तख्त पर ही बिठा दिया। गुलाम अली हर महफिल की शान हो गए, पर जगजीत को यह दर्जा मिला कि उनकी वजह से गजल लोगों में आम हो गई।

पंजाब की धरती में शायद नदियां भी सुर से बहती हैं। जगजीत ने वहां की खुशबू को पहचाना, शौक मिजाज को समझा, वहां के रंगों को जाना और जगजीत बचपन से ही गाने लगे। आपकी गजल हर दिल को छूती है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है।

शास्त्रीय संगीत की तालीम उन्होंने उस्ताद जमाल खान से ली। जगजीत के पिता एक साज बजाया करते थे और उस साज को दिलरुबा कहते हैं। घर में भले ही संगीत का माहौल नहीं था, पर उनके पिता को संगीत का शौक था। जगजीत के पिता ने ही जगजीत को संगीत की तालीम दिलानी शुरू की। बाद में उनका रुझान इस तरफ हो गया और आप सीखने लगे। जगजीत ने राजस्थान के श्री गंगानगर के पंडित छगनलाल शर्मा को अपना गुरु बनाया और लगभग 2 साल तक संगीत की तालीम हासिल की।

1990 में एक सड़क हादसे में विवेक उनका बेटा जो 21 साल का था दुनिया से चल बसा। उनकी गोद ली बेटी मोनिका ने खुदकुशी कर दुनिया, जगजीत और चित्रा को अलविदा कहा। जगजीत अक्सर कहा करते थे, संगीत के लिए समर्पण और प्रयास की जरूरत होती है। जब तक मैं जिंदा हूं, गजल भी जीवित है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।

आप सुन रहे थे रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज के हमारे प्रसारण अब समाप्त हो चुके आपके आज के हमारे प्रसारण आप समाप्त होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रहते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट कृष्णा। चाहूंगी आपसे आज्ञा, मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।